अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

कोई रसना खाली ना रहे। पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरिया भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।